0: A premium clothing brand, Fashion IQ. Fashion IQ. Latest design, trending outfits.
1: लेडीज सूट लहंगे गरारे शरारे
0: कुर्ते पजामे शेरवानिया कोट पैंट ब्लेजर अते किड्स फैशन
1: विंटेज ते सफारी लगेज सेट्स दी वड्डी कलेक्शन थीम वेडिंग ले टॉप टेलर टीम भी अवेलेबल फैशन आईक्यू फैशन आईक्यू हुने कॉल करो 9054533225 या गूगल ते सर्च करो फैशन आईक्यू स्पेशल गिफ्ट ले रेडियो उड़ान दा रेफरेंस देना ना भूलियो

ने बुलाया है धन पाग दे जिन्हू गुरु नू बुलाया है जेड़े जेड़े सिंह नू भी सेवा विच ला।

लाज राखी बोलाया बोली तेरा तू साहे कुड़ी गहरा जब नानक नाम सच साखी अपने दास की पैज राखी।

जीवन परवान रहा अखत कथा अमृत बानी कहना न जब जीवे ज्ञानी दिलावर महला पंचम सात माई गुर सतगुर पूरे सुख उपजे बाजे अनहत तोरे रहा ताप पाप संतरा मनसे मन सिमरत किल बिक सपना से अनहत करहो मिल सुंदर ना।

साज जना होए कृपाली बिकसे सब मरवारिया कर सब रियाप सवारिया वड्डी यार या हर गोविंद की सुख मंगल कल्याण बिचारिया रहा वन त्रिन त्रिपहण हरिया होए सगले जिया साधारिया मन छे नानक बल पाए पूरन इच पुजारिया रोक गया प्रभु आप गवाया नीत पई सुख सहज कर आया रहा राज राज भोजन खावा मेरे भाई

का शोक रहा, सर्प सुखा तेरी मंडली, तेरा मंदन आरोग, गुनगा भवनत राम के ते अवध जोग, आए बसों का तेज महक।

अपनी कर मया रहा सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निर्भया अल्लाह अल्लाह पंजवा उपजिया सुख।

0: आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यारा सा स्वागत है, अभिनंदन है सभी को, नमस्कार, आदाब, जय साईं राम, या अली मदद। और आपके लिए मौसम अब बेहतर ही हो रहा है, बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सभी पेरेंट्स को बहुत बहुत बधाई ग्रेजुएशन की। और अभी बच्चों के स्कूल बंद हो जाने हैं, जून के एंड तक फिर छुट्टियां हो जाएंगी, बच्चों को भी गर्मी होती है। तो आप सभी का स्वागत है घर संसार में। तो आइए आपके लिए बढ़िया सा प्रोग्राम पेश करते हैं। पहले तो आपको बता दें, आपने फादर्स डे आने वाला है, आपको फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, टीवी बढ़िया लेके देना है, या फिर आउटडोर फर्नीचर और बारबेक्यू लेके देना है आउटडोर पार्टी करने के लिए। वो तो आप फादर्स डे के लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स की स्पेशल सेल्स का फायदा उठाइए। topchoiceelectronics.com पर जाइए और फिर उनकी लोकेशन आपके लिए इंटर मॉडल लैंड एयरपोर्ट रोड ब्रैम्पटन में, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल में है। तो और अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने कहीं पे भी आपको बढ़िया सा आपको सोने के गहने लेनी है, सोने के बार्स लेनी है, बढ़िया से आपको फादर्स डे के लिए गिफ्ट चाहिए, ब्रेसलेट्स, गोल्ड की चेन चाहिए, तो आप अल मदीना ज्वेलर्स पे जाइए, उनकी स्पेशल्स का फायदा उठाइए। और जानकारी के लिए आप अपने ऑर्डर बुक करने के लिए आप उनको कॉल कर लीजिए। तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया उनकी स्पेशल सेल फादर्स डे की। किसी तरह का ऑर्डर करना है तो 905-673-0100 पर आप कॉल कर सकते हैं। तो आप अल मदीना ज्वेलर्स पे जाइए, उनकी फादर्स डे स्पेशल सेल का फायदा उठाइए। आप सभी को फादर्स डे की बहुत सारी शुभकामनाएं हैं। तो अब आपके लिए ये बहुत ही एक प्यारा सा गीत हम सुनाते हैं। तो पहले आपको बता दें कि अगर आपने ट्रक रिपेयर करवानी है, किसी किस्म का भी कोलिजन का काम करवाना है, तो आप कोलिजन का काम करवाने के लिए आप जाइएगा मास्टर कोलिजन डिपो, लंदन के आसपास के इलाके में रहते हैं। तो आप लंदन के आसपास के इलाके में रहते हैं तो आपको मास्टर कोलिजन डिपो पे जाइएगा, किसी तरह का भी कोलिजन का काम करवाना है, masterkollisiondepo.com पर जाकर आप जान सकते हैं। तो और जानकारी के लिए आप उनको कॉल कर लीजिएगा, masterkollisiondepo.com पे जाके उनकी सारी जानकारी ले सकते हो। और गोर रोड पे लंदन में उनका गैराज है। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। अब आपके लिए एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं, लेट्स गो टू द बढ़िया सा प्रोग्राम आपके लिए पेश करते हैं। तो गाना भी बहुत बढ़िया सा है, तो लेट्स गो।
1: चमन के फूल भी तुझे को गुलाब,
0: लता जी का गाया हुआ ये गीत है। तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग और उम्मीद रखती हूँ कि आपको पसंद आए।

जी हाँ, एक बार फिर से आपका संसार में क्या है कि जिंदगी में आपको अपने आसपास का जो वातावरण है उसके बारे में देखना जानना बहुत जरूरी है, उसके समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो धोखा करने वाले लोग हैं, हेरा फेरा करने वाले लोग हैं, वो अलग अलग शक्लों में अलग अलग भेसों में आपके आसपास मंडरा रहे होते हैं और आपके ऊपर हावी होने के लिए कुछ भी करेंगे। तो इसलिए आप अपनी जिंदगी के खुद मजदार हैं, आपको इन चीज़ों की तरफ ध्यान देना चाहिए और अपने आप को खुद ही बचाना चाहिए, बजाय कि बाद में पुलिस के चक्कर पड़ें और फिर और अदालतों के चक्कर पड़ें। तो अदालतों के चक्कर में तो कोई आपके पैसे ही लगेंगे। अब इस हफ्ते देखो, एक हफ्ते में दो पुलिस ऑफिसर्स की मौत हो गई अपने इन लाइन ऑफ देयर ड्यूटी। हमारी पूरी सहानुभूति उनके परिवारों के साथ है और साथ साथ उनकी जो समाज में उन्होंने इतनी सेवा की, और हम सभी को दुख है, ये जो दुख है हम उनके परिवार के साथ मिलकर उनको शेयर करते हैं उनका ये दुख, क्योंकि वो कितने समाज के लोगों की जानें बचा रहे थे, सेवाएं कर रहे थे और उसी लाइन ऑफ ड्यूटी में उनका उन्होंने अपनी जान दे दी, कुर्बानी कर दी, अपनी जान कुर्बान कर दी। तो इसलिए हम उनका वो जितनी देर तक ये धरती है लोग उनको याद करते रहेंगे और उनकी कुर्बानियों को धन्यवाद करते रहेंगे।

0: समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारिया आइटमां $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड जानकारी ले कॉल करो 416-213-1165।
1: जी हाँ, एक बार फिर से आपका स्वागत है कार्यक्रम में। तो मैं बात कर रही थी कि आपको अपना अपने आप से अपना ख्याल रखना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि एजुकेशन जो होती है, कुछ भी सीखना है आपको तो एजुकेशन इज एजलेस, उसकी कोई उम्र नहीं होती है। आप कभी भी कुछ भी सीखना चाहते हो तो आप जरूर सीख सकते हो। जैसे AI है, अभी अगर आप घर पे बैठे ही अपने लिए कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे तो आपके लिए कितनी बड़ी नॉलेज की बात हो जाएगी।
2: यहाँ से आपको थाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बारात सिडोली तक का सारा सजावट का सामान भी मिलेगा। 30 Melanie Drive, Unit 9 and 10 ब्रांटन, टेलीफोन 905-799-9400।
1: तो अब अगर आप किचन और बाथरूम वॉइस में घर खरीदना चाहते हो, बेचना चाहते हो, तो आप निश्चित खंड को कॉल कीजिए 519-546-1260 519-546-1260 पर आप उनको कॉल कर सकते हो। तो अब आपके लिए आप एक और मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ गीत है, देवानंद के ऊपर फिल्माया गया था और तेरे घर के सामने फिल्म का, लेट्स गो टू। अगर आप मूव होना चाहते हैं तो आपके लिए HK मूवर्स कनाडा भर में मूव होने के लिए आपके मदद करते हैं। तो अभी अपना ट्रक बुक करने के लिए आपके सामान को बड़ी हिफाजत से पहुंचाते हैं 416-524-4165-24-6704 HK मूवर्स।
3: ये बता
1: जी हाँ, तो आप प्रोग्राम मास्टर, अगर आपको किसी तरह की भी आपने कोलिजन का करना है तो मास्टर कोलिजन डिपो आपके लिए लंदन में मौजूद है गोड रोड पे। तो आप और जानकारी उनके बारे में फिर आप अगर कोई भी किसी तरह की भी सेवाएं लेना चाहते हो तो आपके लिए आपके लिए बहुत बढ़िया सेवाएं मिलेंगी। तो HK मूवर्स।

एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में। आपकी होस्ट मीरा, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार। तो अब आपके लिए एक और बहुत ही बढ़िया सा गीत मैंने चुना है, तो रात को भी हम आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे 10 से 11 बजे तक। अब अगर आप अपने घर में फ्रिज स्टोव वाशर ड्रायर लाना चाहते और फादर्स डे के लिए गिफ्ट आपको खरीदनी, बढ़िया सा टीवी आपको चाहिए, जहाँ फिर आपने आउटडोर फर्नीचर लेना है, बारबेक्यूज लेने हैं फादर्स डे के लिए, तो आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स की फादर्स डे सेल का फायदा उठाइएगा। उनकी दो लोकेशन हैं आपके लिए, इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड, दूसरी लोकेशन गोल्फ में है। तो अपने ऑर्डर बुक कीजिएगा 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स को कॉल कर सकते हैं। अब अगर आपने किसी किस्म की भी आपको मूविंग, तो एचके मूवर्स आपको कनाडा भर में मूव होने में मदद करते हैं, आपके सामान को पार्लर से पहुंचाते हैं, तो आप आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए। तो 416-524-6524-6524-6704 आपके सामान को हफाजत से पहुंचाते हैं एच के मूवर। मूविंग के लिए आज ही कॉल कीजिए 416-524-6704।

जी हाँ, तो अब हमारे प्रोग्राम का समय समाप्ति की तरफ है। अगर आपने ट्रक रिपेयर करवानी है तो बेस्ट ट्रक रिपेयर एंटायर सेंटर को कॉल कीजिए 905-625-00-55-00-55। आपको खाना ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है, न्यू इंडिया स्वीट्स है रेस्टोरेंट को कॉल कीजिए 905-814-1730-05-814-1730। नानक राम चढ़दी कला तेरे पाने स्वादा पला, हैव ए वंडरफुल डे। रात को आपकी सेवा में हाजिर हो जाएंगे एक बढ़िया सा प्रोग्राम लेकर के। तब तक के लिए नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने स्वादा पला। तो अब आप सुन रहे हैं प्रोग्राम घर संसार और आपकी होस्ट मीरा। तो आपको पसंद आ रहा है तो आप जरूर हमें मैसेज कर सकते हो, और मैं सभी भाई बहनों का धन्यवाद करती हूँ जो हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं और सराहते हैं।

बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

नानक के बेनंती स्वामी तेरे जन देखण पावा वड पागे से काडिया है प्यारे संत संगत जना वासो अमृत नाम आराध्य निर्मल मन होवे परगासो जन्म मरण दुख काटिया प्यारे चूके जम की काने

पशु परेत मुगध कौतारे पाहन पारे उतारा नानक दास तेरी शरण आए सदा सदा बलिहार वाहे गुरु जी का खालसा।

0: प्यार तेरी, नाम तेरा, कुछ नहीं जो मेरा, स्वास भी तेरे, एहसास भी तेरा, एक तू ही सतगुरु मेरा। मैं हाँ संतोष कौर एंड तुहाडे सारिआं दा अपने शो रेडियो आवाज़ विच स्वागत करदी हाँ। हुण तुसी सारे जाने अपने रेडियो दा वॉल्यूम कर लो अप ते स्ट्रेस दा वॉल्यूम कर लो बिल्कुल डाउन, क्योंकि हुण तुसी सुन रहे हो साडा शो रेडियो आवाज़ हर गली हर सिटी हर टाउन। ते उम्मीद करदी हाँ तुहाडा सारिआं दा अज दा दिन बहुत ही वधिया होवे, चढ़दी कला वाला होवे। ते साडा शो रेडियो आवाज़ 1001 तुसी सारे सुन रहे हो साडा शो। ते अज असीं इन्नीआं सोहणीआं सोहणीआं डील्स लैके आवांगे। वीकेंड दा धमाकेदार शो हुंदा साडा, और साडे शो दे मेन होस्ट हुंदे आ साडे नाल अमनदीप सिंह बैनीपाल जी। एंड अमन जी, स्वागत है तुहाडा।
1: थैंक यू सो मच। इक सुरमई सवेर जिंदगी दे बैराग वर्गी, अलादीन दे चिराग वर्गी, जिवें संघणे बूड़ां दी छां, जिवें मूंह विच डुब्बी मां, ठंड वर्गी, खंड वर्गी, दोस्ती दे सच वर्गी, खुशी ना भरे गच वर्गी, मेरी सत श्री अकाल भी प्रवान करोंगे। और एक खूबसूरत सवेर दा आगाज़ एक खूबसूरत जे मुल्क कैनेडा दे विच, ते खूबसूरत मुल्क अमेरिका दे विच, दोनों मुल्कां ते तकरीबन 4 तो वध प्रोविंसेस 1000 किलोमीटर दे रेडियस च, ईस्ट वैसट साउथ नॉर्थ दे विच, इस समय गलियां मुहल्ले कूचे घर बार जिथे मर्जी हो ट्रांजिस्टर रेडियो सैट्स या तुसीं ऑनलाइन सानूं सुन रहे हो www.am530.ca ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ radiowastronto.com ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਟੱਚ ਬਟਨਾਂ ਦੀ ਜੋੜੀ ਵਾਂਗੂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋਗੇ। ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਓਗੇ।

0: Pancho, 30 Rambler Drive, Brampton. Major intersection, Steels and Kennedy, 90545-12600.
1: हाँ वीर वीर किधर फाइला चक्की फिरदा सवेरे सवेरे
2: ओ पाजी मॉर्गेज लई महीना हो गया एक दफ्तर तो दूजे दफ्तर टक्कर काट दे हुए यार आ किन्ने सवाल जवाब कर देने मॉर्गेज वाले
1: देख भाई जे तू लेना मॉर्गेज या लोन
3: ते तेरा काम 24 घंटे च करनगे मिस्टर संधू
2: अच्छा जी
4: आहो जी नीड प्राइवेट मॉर्गेज एंड लोन्स देन कॉल मिस्टर संधू एट 9056712000 नो क्वेश्चंस नो क्रेडिट चेक लोन अप्रूवल विद इन 24 आवर्स नंबर रखो याद 905-671-2000 9056712000 Mr. Sandhu
5: यार लास्ट वीकेंड असी तवा किचन तो केटरिंग ऑर्डर कीता सी ऑनेस्टली बेस्ट डिसीजन सी हां ब्रो फूड वाज अमेजिंग फ्रेश हॉट ते फुल

0: 1530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.
1: सी ज्योति को पहुंच रहे एक बार फिर तो, और ज्योति सॉरी स्टेशन आईडी थी बीच में, और एक बार फिर से हम बताएंगे कि जो फोटो तुसी दे देनी है फ्रंट यार्ड दी और बैक यार्ड दी फोटो दे देनी है, ज्योति तुम दसंगे मैं आप खुद मेरे राउंड अबाउट जिवें गोल धारा बनाया हुंदा वह बनाया हुआ फ्रंट यार्ड के विच ते प्लस विंडोज़ के नाल जिहड़ियां विंडोज़ हुंदियां उहदे नाल इक कैरी मंगो दे एरिया बने हुए ने। अगर तुसी कोई मेरी फोटो देखी है ना मेरे घर की, बिल्कुल मेरे नाल पंजाबी रहिंदे ने तेले पासे गोरे रहिंदे ने, तुहानू देख के पता लगूगा कि यह गोरियां दा घर आ। मेरे घर नूं इदां कहोगे
2: जी,
1: इन्ने फुल बूटे, इन्ने मतलब मैं नहीं कहिंदा वी बाकी लाए, बाकी अपने शौक नहीं
2: जी,
1: तुसी बूटियां दा शौक रखो, कुदरत नूं नंगे पैरी होके मिट्टी ते बैठो, तुहाडी अखां दी निगाह ठीक हुंदी आ
2: जी,
1: मानसिक बीमारियां दूर हुंदियां ने। मेरे ज्योति मेरे ना नेबरहुड में एक लेडी है, उसने आपके प्याज की पनीरी मांगी है मेरे से और पनीरी बनाने के लिए।
3: माय गॉड,
1: हाँ वो डच लेडी है, यानी कि यूरोपियन है वो। बैकयार्ड उसका ना ग्रीन हाउस बनाया हुआ, उसका खुद का बैकयार्ड, मतलब उसने ग्रास नहीं रखा लेफ्ट और राइट करके, और वो हार्वेस्टिंग करती है जो पानी ऊपर से आता है गटर से, उसको डालती है उनके अंदर, और उसने मेरे से पनीरी मांगी है क्योंकि हमारी देख के गई थी आके, वो बोली कि मेरे को ये चाहिए, ऑनियंस चाहिए
2: जी,
1: हमने उसको बताया कि ये देसी ऑनियंस है, ऐसे निकाल के जमीन से ऐसे खाते, यूट्यूब से वीडियो दिखाई, उस दिन से पीछे पड़ी है कि मेरे को ये ऑनियंस चाहिए।
2: वेरी नाइस।
1: और ओल्ड है, और उसकी एज ज्योति क्यों बड़ी हुई है बताऊं, क्यों? स्ट्रेस जमा ही नहीं आनू, अकेली रहती है, कोई नहीं है, कोई बच्चा नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि सारा दिन प्लांट्स के साथ लगी रहती है, उसके बच्चे हैं। इसीलिए मैं बोल रहा था कि जब हम सुबह उठते हैं ना, हम विंडो खोलते हैं, अपने प्लांट्स की तरफ देखते हैं, हम मुस्कुराने लग जाते हैं, और जब हम फ्रंट यार्ड के विंडोज को ओपन करते हैं
2: जी,
1: तो हम हमारे फ्रंट पे जो फ्लावर वैली है हमारी, उसको देख के खुश हो जाते हैं, डेली चेक करके जाते हैं, डेली पानी डालते हैं
2: जी,
1: बड़ी खुशी मिलती है। ग्रीन वैली गार्डन सेंटर 647-222-5501, जिते गुरदेव भाई जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि इन्ने हजारां लोगों तक आवाज पहुंचा रहे हैं, और ग्रीन वैली ते तुसी ज्योति कोल आके कंसल्टेशन करदे हो। आम तौर पर तुसी होम डिपू नाल उत्थे ही फुल मिल जाने, बूटे मिल जाने, पर ज्योति कोल आने का फायदा यह है कि ज्योति तुहानू सिखाउंदी आ किहड़ा किहड़ा खरीदो, किदां दा लाओ, किन्ना वधूगा, किन्नी तुहाडी जगह।
2: बिल्कुल
1: ज्योति जी, नंबर 6472225601। और मैं दस मैं बड़ी पार्किंग है, और नाल बाहर रियो दे ढेर पए ने, तुसी रियो जिहड़ा पाउणा उह कैनेडियन टायर ते होम डिपू च मिलदा तुहानू
2: जी,
1: सेम स्टैंडर्ड दा, ते यकीनन तुसी इस ग्रीन हाउस ते जाओगे, फूलों में खुशबू आती है, बताओ ज्योति सभी को।
3: हाँ जी, हाँ जी, हमारे पास रोजेस है, लैवेंडर्स है, लिलियाक है, जिनकी बढ़िया खुशबू होती है, आप जरूर, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगी आके जरा देखो, नेचर का, नेचर के भी मजे लो, यू नो इट्स अमेजिंग।
1: सो एक बार फिर मैं दसवां, तुसी पहुंचना है का ग्रीन वैली गार्डन सेंटर, दो लोकेशन ने, वड्डी लोकेशन होना 1.5 एकड़ दी जिहड़ी बनी हुई है वो हैगी है क्वीन स्ट्रीट का नाम बन जाता है एम्बल्टन रोड ब्रैम्पटन, जब तुसी जॉर्ज टाउन वल नूं जाने हो, मिसिसागा रोड नूं टप जाने हो, कुणी मोड़ आउंदा, कुणी मोड़ तो बाद रोड हैरीटेज दे एमाजोन का सेंटर है, जे स्टील तो आ रहे हो तुसी किसी भी पासे 401 तो आ रहे हो, तुसी स्टील तो हैरीटेज दे उत्ते लैफ्ट कीती ते नॉर्थ नूं जा रहे हो, जांदे हुए एमाजोन की बिल्डिंग टपते हो, पहली स्ट्रीट आती है एम्बल्टन
2: जी,
1: लैफ्ट हैंड के उत्ते एक प्रॉपर्टी छड़ के दूजी प्रॉपर्टी है ग्रीन वैली गार्डन सेंटर, 647-222-5501 पहुंचो तो सारे फटाफट। ज्योति नेक्स्ट फोन में पूछूंगा कितने लोग पहुंच गए आपके पास।
3: हाँ जी, हाँ जी, मैं बता दूंगी, अभी तो लाइक काफी सुबह सुबह लोग आके लेके भी गए हैं, और फोन कॉल भी आ रहे हैं आपके पास क्या क्या अवेलेबल है, तो गुड रिस्पॉन्स सिंस मॉर्निंग।
1: 6472225501 वर्थ है
2: जी,
1: किसी भी शहर तो ग्रीन वैली गार्डन सेंटर जाना, भिंडी इंडिया वाली, टेस्ट इंडिया वाला, करेले इंडिया वाले, तुसी ना करेलिया का जूस पी लियो, शुगर चेक करायो 3 बार जूस पीने तो बाद, जे डॉक्टर थानू ये ना पूछे शुगर डाउन किवें चलेगी, एक्सरसाइज करन लग गए, जिम जान लग गए, ऐ करन लग गए, तुसी कहोगे नहीं, ग्रीन वैली गार्डन सेंटर तो दरख्तां दी जड़ लैके आए सी, जड़ां लैके आए सी, वो चो करेले निकले, वो प्योर सी ना, फ्रोजन सी, उन्हां च कड़त्तण इन्नी सी कि केरां तां नक बंद करके पीते, पर शुगर खत्म होगी, ग्रीन वैली गार्डन सेंटर 647-222-5601 ते ग्रीन वैली गार्डन सेंटर तुहाडे लई 2547 एम्बलटन ते दूसरी लोकेशन मकवीन एंड मेफील्ड दा इंटरसेक्शन ते गुरदेव भाई जी नूं मिलना उत्थे ते इधर ज्योति है तुहानूं हैल्प करनगे। रेडियो आवाज़ AM 530 डालते सुन रहे हो।

0: हाँ जी किरण, हेलो हेलो,
1: हाँ सर, हाँ
0: श्योर है किरण?
1: हाँ जी।
0: चलो ते कुलदीप जी।
2: हाँ जी, सत श्री अकाल जी।
0: सत श्री अकाल जी।
2: ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸਰਾਜ ਜੀ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ।
0: ਮੈਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁਲੇਖਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ।

0: सो जिंदगी की ना टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिथे मनोज कुमार एक ऐसी आर्टिस्ट हुए जिन्होंने रियलिटी के उ जिंदगी की सच्चाई के उत्ते फिल्म इंडस्ट्री काम किया, नंगेपण तो नंगेज तो दूर होकर होर बहुत कुछ ऐसा फिल्म बनाई साफ सुथरिया जिन्होंने लोगों ने प्यार सन्मान ना दिता है। रीत जहाँ की प्रीत सदा जहाँ मैंने एक चीज़ होती है कि जिते नदियां भी लोग माता कह के बुलाते हैं इन्हों के गाने दे सी। वो समा सी कि युग सी संतोष।
1: हाँ
0: अज मैं गल करता हूँ कि केरला दे विच ब्रिजी हुणे ब्रिजी जिहड़ा कि मालिश का काम करता है
1: जी।
0: किसी ने भी मालिश करवानी अज देसी मालिश है और ये मालिश पोटलियां नाल है जड़ी बूटियां नाल है तेलों के नाल है जिहड़े जड़ी बूटियां चो जंगलों चो निकलिया। केरला ने स्टैबलिश किया अपने आप को दुनिया भर के जड़ी बूटियां के नाल इलाज करने लिए बीमारियों लिए। उत्थे जिथे हम उस देश के वासी जिथे गंगा नू असी अज जे प्रधानमंत्री स्नान करन जांदा कि प्रचारक मुहिम के तहत लोगों पिछे लाने के तहत तो उत्थे भी पानी नू फिल्टर करके साफ करके आले दुआले लोग लगा के उन्हों पानी चो डुबकी लवाई जाती है। सो उस पानी नू इन्ना साफ या गंदा मनिया जाता है। उत्थे दिल्ली दे विच वसदी जिहड़ियां नदियां ने वड्डियां उन्हां दा तां हाल ही माड़ा हो चुका है, लोगों ने इन्नी गंदगी उहदे च डंप कीती है। पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत जिथे गुरु पातशाह साढ़े सानूं पाणी की महत्ता दस के गए हैं। उम्मीद करदा इन्हां मुल्कां च रह के तुसीं सब चीज़ां सत्कार करोगे। बूटे लगाने ने जिन्होंने ग्रीन वैली गार्डन सेंटर नूं कॉल करो हुणे बूटे फल फ्रूट बड़ी दुनिया पहुँच रही है। मेथे लाओ अपने घर के धनिया लाओ पिंडा वांगू खाओ बैकयार्ड के रियो पाओ तो रियो रियो के नाल देखियो कितनियां ऑरगेनिक सब्जियां तुहाडे पेट के अंदर जाणगियां खाओगे आनंद बनाओगे। मैं तरां भी लाईआं ने तरां जड़ियाँ ठंडिया करके खाते से आप। ग्रीन वैली गार्डन सेंटर खुला तो पहुँचो फटाफट 2547 एम्बल्टन रोड ब्रैंटन 647-222-5601 647-222-5601 पिछले कुछ दिनों तो डगफोर्ड सुरखियों के माड़े दिन चल रहे हैं। डगफोर्ड के एक गेम खेडी ये 4 साल पूरे होने वाले से प्रीमियर ऑफ ओंटेरियो की गल करदा 4 सालों तो बाद इन्हें एक चलाकी खेडी इन्हें एकदम अर्ली अनाउंसमेंट कर दी इलैक्शन की। इन्हें देखिया डोनल्ड ट्रंप ने रौला रप्पा पा लिया तो क्यों ना मैं यदि माइलेज लवा। इन्हें बीयर स्टोर तो बीयर चकती हैं 2-4 एक्शन जो होर मारे 2 धमकियां दित्तियां 4 मारियां भड़का लोगों ला लिया। मगर अज लैंडलॉर्ड टेनर बोर्ड के बुरी तरह फेल हो चुका डगफोर्ड जिथे हाउसिंग इंडस्ट्री चो लोगों का इंट्रस्ट लूज हो गया। ये यार ने जड़े वो कहें ने कि कुछ कर यार बिल्डर ने जड़े ये यार ने जड़े सके वो कहें ने यार कुछ कर उन्होंने लिए बेनीफिट लैन पहुँच गया कि HST रिबेट दे दो उन्होंने वास्ते। यही डगफोर्ड उन्होंने डिवेलपमेंट कॉस्ट माफ करा रहा। यही डगफोर्ड से जदों करोना वायरस आया से याद रखियो इस आदमी ने दुकानदार ने रिबेट नहीं दिती। इन्हें कहा मेरे यार तो जेडे व्डे प्लाजा के मालिक ने जे थोड़ी उत्थे एक दुकान है मेरे यार तो चिट्ठी लिखा के दो कि रेंट माफ करे तो मैं रेंट दूंगा नहीं मैं नहीं दूंगा। तो ये यार ने किसी ने भी चिट्ठी नहीं लिखी। अज इंश्योरेंस के एक कार जी मोंट्रियल $120 पर मंथ एक इंश्योर हो रही है। वह कार जो ओंटारियो बढ़ती है भावें किंगस्टन पहुँचो कॉर्नवॉल पहुँचो वो इंश्योरेंस $235 to $250 हो जाती है। 120 to 235 डबल पर जो GTA बढ़ जाती है 487 तो हैरान हो 550 भी मंग लेंगे ने मूँह मंगी रकम तुम्हें मिलती है। अगर तुम इंश्योरेंस कंपनी के मालिक हो लुटिया जा रहा लोगों कोई ऑडिट नहीं इन्हों का कोई चैक नहीं करता लुटिया जा रहा लोगों पर लोगों बचा करने के लिए भी लोग बैठे ने। यानी कि अपनी इंश्योरेंस कंपनी अपनी मम्मी पापा ना बनाओ तो इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस कंपनी मंगो समझ के चलो। अपनी ऑटो इंश्योरेंस चैक कराओ कि घट सकती है। मनमोहन सिंह सत श्रीकाल
2: इंश्योरेंस ली हुई है ते इंश्योरेंस रेट्स एवरी ईयर अप एंड डाउन जाते रहते हैं हर कंपनी दे उन्हां दा प्रॉफिट लॉस रेशियो दे हिसाब नाल वो अपने प्राइस एडजस्ट करते हैं। सो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जिन्हां दे रेट चेंज आते हैं वो ये होंदा है कि 3-4-5 साल तो उन्होंने चैक नहीं करवाई तो जो वो साढ़े को आते हैं आप 20+ कंपनी से ना उन्होंने कोट दें तो उत्थे काफ़ी सेविंग देखने को मिलती है। ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰੈਕਡ ਚ ਕੁਛ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਹਜੇ ਵੀ ਸਟਿਲ ਉਹਨੂੰ ਸੇਮ ਰੇਟ ਚ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹ ਟਿਕਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੈਕਡ ਚ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਰੈਕਡ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੈਕਡ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ ਉਹ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਟਿਕਟ।
0: ਮੈਂ ਸਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਾ ਰੈਕਡ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦੇ, ਆਪਣਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਕੋਰ ਚੈੱਕ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਰੈਕਡ ਦਾ ਐਕਸੈਸ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਰੈਕਡ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਰੇਟ ਘਟ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਕਡ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਰੇਟ ਘਟਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਘਟੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ।
2: ਜੀ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਜੀ $2700 ਈਅਰਲੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਡੀਆਂ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ $1600 ਈਅਰਲੀ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਇਸ ਵੀਕ 'ਚ, ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਕੇਸ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਸੀ ਤੇ ਟੈਨੈਂਟ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਕੇਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ $850 ਈਅਰਲੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ।
0: ਯਾਨੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਗੈਸ ਫ੍ਰੀ ਪਾਈ, ਚਾਹੇ ਉਬਰ ਕਰਦਾ ਹੀ 400 ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਉਹ ਬਚਾ ਲਈ, ਫ੍ਰੀ ਪਈ ਗੈਸ ਉਹਦੀ। ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ $2700 ਬਚਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ, ਦੋ ਮਕਾਨ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਮਨਮੋਹਨ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀ, ਨੰਬਰ ਕਿਹੜਾ?
2: 416-990-3200
0: ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਟੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਕਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਬਚੂ। ਮਨਮੋਹਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਬਚਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਆ?
2: ਜੀ, ਸੋ ਕਾਫੀ ਸੇਵਿੰਗ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਲਈ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਈਟ ਵੇ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਨੂਅਲੀ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਪਨੀਸ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਟ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਵਰੇਜ ਐਕਸਟਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹਦੀ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸੀ 'ਚ ਕਵਰੇਜ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਿਸ 'ਚ ਐਕਸਟਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 30-40-50-50% ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਸ ਉਹ ਘਟਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ।
0: ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੱਜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ?
2: ਜੀ, ਆਲਰੇਡੀ ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਭਾਜੀ।
0: ਹਾਂਜੀ,
2: 416-990-3200-416-990-3200।
0: ਇਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਤੇ ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਨਾ 416-990-3200 416-990-3200 416-990-3200।

0: ஆசியா செகண்ட் மோர்கேஜ் ரீஃபைனான்ஸ் கிரமனோ சொன்னோம் தத்து சிவி அப்படிங்கட்டி மோட 1200 டெரி ரோட் ஈஸ்ட் யூனிட் 22 மிசிசாகா 416-804-2015 416-804-2015
1: टीम सिद्धुला के आए ने कैलडन शहर दे विच द गोर रोड एंड मेफील्ड रोड ते एक नमी मास्टर प्लान कम्युनिटी जेदे विच 2500 तो भी ज्यादा नमे टाउन हाउसेस सेमी डिटैच ते डिटैच कर तैयार होंगे 2027 एंड 2028 दे विच ट्रेडिशनल टू स्टोरी फ्री होल टाउन हाउसेस बट डी बैकयार्ड ते अनफिनिश बेसमेंट नाल सिर्फ 7 लाख डॉलर दी रेंज दे विच इन द 700s बहुत जल्द आ रहे ने सेमी डिटैच कर 8 लाख दी रेंज दे विच इन द 800s रिलीजिंग वेरी सून सब तो खास डबल कार गराज वाले बड़े डिटैच कर सिर्फ 9 लाख डॉलर दी रेंज दे विच इन द 900s रिलीजिंग वेरी सून पब्लिक रिलीज तो पहला बेस्ट लॉट एंड लॉट कॉर्नर लॉट दे लिए जल्द तो जल्द संपर्क करो एट 416-302-0016 416-302-0016
2: अपना हरमन प्यारा रेडियो प्रोग्राम देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्षों तो तुहाडे अंग संग देश प्रदेश हुण अपने शाम दे प्रोग्राम दे विच वाधा कर चुका पहला तुसी सुनदे सी मंडे टू फ्राइडे 4 to 6 लेकिन हुण तुसी सुनदे हो 3 to 6 शामी जाने के देश प्रदेश तुहाडे लई शाम नूं 3 घंटे पेश हुंदा है ते नाल तुसी दुपहरे सैटरडे 1 to 4 शाम दे 4 बजे तक देश प्रदेश नाल सांझ पाउंदे हो देश प्रदेश रेडियो प्रोग्राम दे विच कोई भी अपने काम कार दी एडवरटाइज करनी होवे तां अफोर्डेबल पैकेज लई अज ही कॉल करो सम्राज सिद्धू होरां नूं 416-457-3381 416-457-3381 जां तजिंदर सिंह सिद्धू दे नाल कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551 देश प्रदेश प्राइम टाइम रेडियो पिछले 30 वर्ष

0: Artist Drive, Unit 9, Mississauga.
1: Hi, चूहा ते कॉकरोच भी सुन लो मेरी गल, मैं इस किचन च खाना बनाना ही नहीं
2: है। फिर कॉकरोच तो जो है वो हाले महीना पहला तो ट्रीटमेंट कराई सी।
1: मैं तेरा पहला ही क्या सी, सस्ते दे चक्कर च ना पो, हुण उपरो बेसमेंट वाले बेड बग दी कंप्लेंट भी करी जांदे आ।
2: ओ मैं तां कहना घर ही बेच दिंदे आ।
3: आप घर चो बाहर क्यों जाना, चूहे कॉकरोचां नूं कड्डो, टोरंटो पेस्ट अरेस्ट नूं कॉल करो। जिहड़े छोटे तो छोटे घर तो लैके वड्डियां बिल्डिंग्स, रेस्टोरेंट, होटल्स, मोटल्स, नर्सिंग होम्स विच वी काम करते हैं, सस्ते दा दावा तो नहीं पर कम दी गारंटी है। 647-515-8000 टोरंटो पेस्ट अरेस्ट, सिक्के बंद कम दी गारंटी। 647-515-8000

0: 530 CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.
1: संगीत रुदी खुराक है,
2: आत्मा दी आवाज है,
1: कुदरत दा वरदान है
2: और प्यार दी जुबान है।
1: जिंदगी जिंदगी जिंदगी।
3: सत श्री अकाल जी सारे नो, हरवीर सिंह पुल्लर वालों एएम 530 रेडियो प्रोग्राम चढ़दी कला च जुड़ चुके सारे श्रोतियों नु प्यार भरी सत श्री अकाल जी, आया नु निघा स्वागत अज दे इस दिन दे विच। सो सैटरडे दिन है जी, जून महीने की 13 तरीक समा हो चुके है, 5 से 7 बजे तक तुसी इस प्रोग्राम का आनंद माणोगे। सो स्टूडियो दे विच गलबात करन दे लई नंबर 1-416-233-7368 416-233-7368 ते गलबात कीती जा सकती है। सो अज दे प्रोग्राम दे विच जिथे कि बहुत सारे गलबातां होणगीआं, गीत संगीत होगा, खास संदेश साडे स्पोंसर सेवाना दे होणगे। तुसी इस प्रोग्राम दा हिस्सा बनना चाहुंदे हो तां सानू स्टूडियो कॉल की जा सकती है, तो नंबर अगेन 416-233-7368 416-233-7368 ते गलबात की जा सकती है। जॉर्डन संधु का एक गीत आ, ये गीत दे नाल प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि चल के प्रोग्राम होर बहुत सारी गलबात करांगे।

0: जी हाँ, साडे नाल बाई जी जुड़ चुके ने। बाई सुख सुख स्नेहा लैके 294 वॉक ड्राइव तो ठंडी हवा का बुला एक नाल एक फ्री आउन दो बाई जी।
1: बहुत शुक्रिया, धन्यवाद धन्यवाद भुल्लर साहब। बिल्कुल ग्रैंड होम फर्नीचर का मैसेज दे रहे हैं जी परिवारों तक। किसी भी तरह की परिवार फर्नीचर की बाई करनी चाहते हैं इस वीकेंड के उपर, तो स्पैशल जी अब जे ऑफर चल रहे हैं अब, क्योंकि फर्नीचर इंडस्ट्री पहली बार हो जा रहा कि बाय वन गेट वन फ्री वाली डीला। एक चीज लाओ दूजी फ्री, सोफा लाओ सोफा फ्री, बैड लाओ बैड फ्री, मैट्रस लाओ मैट्रस फ्री, कॉफीटेबल लाओ कॉफीटेबल फ्री, योजना डीलां चल रही ने। 294 वॉकर ड्राइव के उपर, 294 वॉकर ड्राइव, 294 वॉकर वॉकर वॉकर ड्राइव के उपर परिवार फटाफट पहुंच जाए डीलां नूं आके लॉक कर लैण, क्योंकि एक चीज बाय करनी है डिस्काउंट से दूजी बिल्कुल फ्री मिल जानी है। सो यह डीलां है मंडे तक नहीं मिलनिया, सो सैटरडे संडे दो दिन दियां डीलां अवेलेबल है, जरूर एक चक्कर लाओ। 294 वॉकर ड्राइव, 294 वॉकर ड्राइव, क्वीन एंड गेटवे की मेन इंटरसेक्शन, सर्व संतारियों की बिल्कुल बैक साइड से, क्वीन वाले वालमार्ट के बिल्कुल बैक साइड के उपर। ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड होम फर्नीचर, घर घर चली इको गल, घर घर चली इको गल, फर्नीचर लेना तो ग्रैंड ग्रैंड ग्रैंड होम फर्नीचर के उपर। चल चल चल भाजी,
0: बहुत बहुत धन्यवाद जी, थैंक यू वेरी मच। ग्रैंड होम फर्नीचर से जुड़े रेडियो प्रोग्राम चढ़ती कला च, स्टूडियो का नंबर है 416-233-7368, 416-233-7368। साडे नाल बाई साहल होनी ने। बाई जी सत श्रीकाल।
2: सत श्रीकाल भाजी, की हाल चाल जी?
0: वधिया जी, ठीक ठाक, चढ़ती कला।
2: भाजी कल की गल आ, मेरे हिसाब ना भाजी पैसे वांडी लेने चाहिए उदा ही।
0: अच्छा, महंगाई बहुत हो गई।
2: हां जी हां जी, महंगाई बहुत आ, सब नू जेब प्यारी अपनी। मेरी दादी कहती होंगी सी भी घड़ी भर की शर्मिंदगी सारी उम्र का आराम, ये वंड लेने चाहिए भाई, यारी लंबी चलती है, नहीं तो बंदा बहना उठना ही हट जाता।
0: सो चाहे मेरा दोस्त है उन्हें चाहे $10 भी लगे हो, $10 मैं कहना यार भी कोई ना भी चलता 50-100 तक का कोई चक्कर नहीं, चलो हजारां च गल हो जाए बंदा फिर वह करता गा, तो वह कहना नहीं भाई $10 भी जे तू लाए है, कहना मैं तो क्लीयर रखना।
2: बिलकुल सही गल भाजी, करना चाहिए, बहुत वधिया चीज है।
0: थैंक यू जी, शुक्रिया। देखते हो किन्ने बंद सानू कहते हैं कि खुले खाते रखने चाहिए ने, भी ये चीजा चीप लगदिया ने, जा फिर जे बाई ने कहा कि थोड़े पल दी शर्मिंदगी, शर्मिंदा वाली तो की गल। चलो अगली कॉल ते जाने, 1792 नंबर है। सत श्रीकाल जी।
3: सत श्रीकाल जी।
0: जी
3: वैसे तो ना जिदा गोरियां दा सिस्टम है ना उदा ही होना चाहिए, अपना अपना बिल देना, क्योंकि जे इकट्ठे भी करिए ना फर्ज कर लो भी $1,000 तो मुड़ के खर्चा आ जाए 1500, तो कौन दऊ?
0: जो रेस्टोरेंट दे विच आपां 5 जणे बैठे हाँ ਉੱਥੇ ਬਿੱਲ ਬਣ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੇਟਰ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ 200 ਕਰ ਦੇ ਸਾਡੇ 50 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚੀਪ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਚੱਲੋ ਕੰਮ?
3: ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵਾ ਉਦੋਂ ਦੇ।
0: ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਤੋਂ।
3: ਹਾਂਜੀ,
0: ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਨੰਬਰ ਸਟੂਡੀਓ ਦਾ ਜੀ 416-233-7368, 416-233-7368, 416-233-7368 ਤੇ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕ

0: बुलेट जे थले होवे
1: मन साहब तुसीं भी जरूर दसो जदों दो फैमिलियां साडू फैमिलियां इकट्ठियां बैठन ते उदों वड्डे साडू दा फर्ज हुंदा पे करना जां छोटे साडू दा फर्ज हुंदा पे करना जिहड़ा पे करदा उहदे नंबर ज्यादा बनदे ने जां उहनूं चूना ज्यादा लगदा गा
2: जवाब नहीं आ रहा सवाल
1: स्रोते जवाब देने नंबर 416-233-7368 416-233-7368 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹਦਾ ਫਰਜ਼ ਆ 416-233-7368 ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

आदाब नमस्कार प्यार सत्कार दिनाल सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग वापस आ गए हैं जी वीकेंड तुसी इंजॉय कर रहे हो शनिवार की शाम की महफल दे विच एक बार फिर तो ट्यून इन कर चुके हो थोड़ा अपना प्रोग्राम रेडियो अंदाज थोड़ी अपनी होस्ट परम दे नाल मेरे वालों साढ़े सारे लिसनर्स नू सारे परिवारों नू बड़े अदब सत्कार दे नाल सत श्री अकाल बहुत सारा प्यार ढेर सारा सत्कार वेलकम जी आयां नू खुश आमदीद एंड स्वागतम

धड़कते दिलों और सुनते कानों को दानिश बुखारी का और फिर से मोहब्बत भरा सलाम। आज फिर से आपके दिलों पर दस्तक देकर आपको थोड़ा सा मदहोशी के आलम में ले जाने के लिए चलते हैं सुखनवरी की दुनिया में। शेर व शायरी से लबरेज गजलों का ये मुख्तलिफ सिलसिला लेकर हाजिर हूँ कहकशां। मेहरबान होकर बुला लो अपनी महफिल में, मेहरबान होकर बुला लो अपनी महफिल में, मैं कोई गया वक्त नहीं जो लौट कर ना आ सकूं। सामीन, मेहरबान या तो खुदा होना चाहिए या फिर उसके बाद खुदावंद इंसानों को इंसानों पर। जैसे कोई पीर फकीर जब मेहरबान होता है तो इंसानों की दुआएं भी लेता है और दुआएं देता भी है। कुछ ऐसी ही गजल आपकी नजर गुलाम अली की, कभी तो मेहरबान होके बुला लो।

दोस्तों ने दोस्तों से इस कदर की दुश्मनी के दुश्मनों की दुश्मनी का हर गिला जाता रहा। आज के दौर में कौन रकीब है या फिर कौन दोस्त, इसका अंदाजा लगाना नामुमकिन सा लगता है। ऐसी ही गजल पेशे खदमत है जिसे आवाज दी है जगजीत सिंह ने।

बिगड़ी को बनाने की तदबीर नहीं बनती, बिगड़ी को बनाने की तदबीर नहीं बनती, टूटी हुई कड़ियों से जंजीर नहीं बनती, कुछ अकल ना हो जब तक तदबीर नहीं बनती, अनजान दानिश से तस्वीर नहीं बनती। सामीन, तस्वीर तो इंसान खुद बना सकता है, मगरचे तदबीर खुदावंद करीम ही बनाता है, क्योंकि तस्वीर में रंग इंसान तो भर देता है, मगर तदबीर में रंग खुदा ही अता करता है। कुछ ऐसा ही रंग है इस गजल में, जिसे अपनी मखमली आवाज से नवाजा है लता मंगेशकर।